0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध हाईकोर्ट पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमत तय करण जे तरीक़े बाबति दरख़्वास्त न ॿुधण जोगी करार ॾींदे रद्द करे छॾी। अदालत चयो त पेट्रोलियम शयुनि जा अघ मुक़रर करण जो इख़्तियार हुकूमत ऐं पार्लियामेंट वटि आहे, सिर्फ़ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि ते अदम एतमाद आहे, इन्हीअ दरख़्वास्त जो जवाब नथो बणिजे।
1: नसरपुर में मीरपुर खास जेल में फोत थियल कैदी जो लाश रखी धरणो। फोत थियल कैदी मोहम्मद यूसुफ टालपुर जो वारसन लाश नसरपुर टंडो लयार रोड ते रखी धरणो हयो। वारसन चयो त असांजे हमराह खे फारूक टालपुर ऐं ॿियनि दुश्मनी था कूड़े केस में फासाए मारियो आहे। जेसिताईं ग्रुप जवाबदार गिरफ़्तार न थींदा तेसिताईं असां लाश दफ़न न कंदासीं।

मुर्शिद दा मट कोई न जाना ना कोई मुर्शिद जेहा जेहा मुर्शिद मंगदे हसे जेहा मुर्शिद मंगदे हसे सानू रब मिलाया।

0: पंहिंजे शहीद जी इज़त कयो। धमकियूं जारी रहियूं त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान अमेरिका खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ईरानी अवाम खे फ़ौज खे धमकियुनि सां डिॼारे नथो सघिजे। मुआहिदे जे शक नंबर 13 वाज़े आहे त धमकियुनि जो सिलसिलो जारी रहियो हो त हतमी मुआहिदे बाबति ॻाल्हियूं शुरू न थींदियूं। लखे ईरानियुनि जे इतिहाद जा मंज़र अवां ॾिठा। घटि में घटि पंहिंजी सही जी ई इज़त कयो।
1: तहरान खां कुंभ पहुचायल शहीद आयतुल्ला खमनाई जे मर्ज जो आखिरी रस्मूं शुरू। आयतुल्ला जवादी आमडी शहीद आयतुल्ला खमनाई जनाद नमाज़ पढ़ाई। कुंभ में आख़िरी रस्मूं मुकमल थियण बाद शहीद आयतुल्ला खमनाई जे मड़ खे इराक मुंतकिल कयो वेंदो। कुंभ में सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम सख़्तु।

0: वज़ीर आज़म जी सदारत हेठ वफ़ाक़ी काबिना जो इजलास अॼु थींदो। इजलास में अहम मामलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी।
1: सिंध हाई कोर्ट पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमत तय करण वारे तरीक़े बाबति दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अदालत चयो त पेट्रोलियम शयुनि जा अघु मुक़ररु करण जो अख़्तियार हुकूमत ऐं पार्लियामेंट वटि आहे। सिर्फ़ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि ते तम एतमाद आइनी दरख़्वास्त जो जवाब नथो बणजी सघे।
0: खानपुर महर वेझो ब मासूम नींगरियूं वाटर कोर्स में ॿुॾी फोत। ॻोठु इस्माइल पिताफ़ीअ में 10 वरियनि जी अजवा ऐं 8 वरियनि जी सबाणी पिताफ़ी ॿुॾी फोत थियूं।
1: तलहार में मीरवा केनाल में पाणी खोड़ ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख्य रोड ते धरणो। आबादगारनि एहतजाज जो मुज़ाहिरो करे हैदराबाद मदीन रोड ते धरणो हयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त सारनि जी पोखे जी मुंद शुरू थींदी आहे। पाशी मलदारनि पाणी बंदि करे छॾियो आहे। पाणी फराहम कयो वञे।
0: नसरपुर में मीरपुर ख़ासि जेल में फोत थियल क़ैदी जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। फोत थियल क़ैदी मोहम्मद यूसुफ टालपुर जे वारसनि टंडो अलियार रोड ते लाश रखी धरणो हयो। वारसनि जो चवणु आहे त असांजे हमराह खे फारूक टालपुर ऐं ॿियनि दुश्मनीअ तां कूड़े केस में फासाए मारायो आहे। जवाबदार जी गिरफ़्तारीअ ताईं एहतजाज जारी रहंदो।
1: हैदराबाद में इंडस पहाड़ी भरिसां दुड़ शख़्स जो लाश इस्पताल मुंतकिल। इतलात साइट पुलिस पहुची लाश तेवील में वठी इस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस ॿुधायो आहे त लाश 50 साल शख़्स जो लॻी रहियो आहे। सुञाणप नाहे थी सघी। फोती जी फिंगर प्रिंट्स कराए डेटा नादरा ॾांहुं मणी वेंदी।
0: नारो वेझो महिमान थी आयल नौजवान खे खट सां ॿधी तशदुद वीडियो वायरल। ॻोठु अताउला पिहार में नौजवान कामरान जिस्कानीअ ते तशदुद कयो वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त नौजवान ठरी मीरवा जो रहवासी आहे जेको नसीबला जिस्कानी वटि आयल हो। पुलिस मौजूद मुतासिर नौजवान तोड़े संदसि वारिस मां केर बि थाणे ते नाहे आयो। वीडियो ॾिठी आहे। इल्ज़ाम हेठि आयलनि खे हथु करण लाइ पुलिस खे मोकिलियो आहे। मुतासिर ईंदा त केस दाख़िल करण बाद वधीक कार्रवाई कंदासीं।
1: रूस जो यूक्रेन जे गादी वारे शहर केव ते हमिलो। 26 ॼणा मारिजी विया। पर मीडिया चयो आहे त रूसी हमले में केतिरा माण्हू शहरी ज़ख़्मी थिया आहिनि। ऐं स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो केरियर जी आख़िरी वर्ल्ड कप खे यादगार बणाइण में नाकाम। फीफा वर्ल्ड कप जे अहम मैच में स्पेन पोर्चुगाल खे शिकस्त ॾेई क्वार्टर फाइनल में पहुची वई। स्पेनिश टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगाल खे 2-1 जे मुक़ाबले में गोल तां शिकस्त ॾिनी। एवन जे ॿिए मैच में बेल्जियम जी टीम मेज़बान मल्क अमरीका जी टीम खे एवन खां ॿाहिरि कढी छॾियो। बेल्जियम जी टीम अमरीका खे 1-1 जे मुक़ाबले में 6 गोलनि तां शिकस्त ॾिनी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास। हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन आ चुके आपने यहाँ पर सुनी जी। हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ताकि सिद्धर आपके साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं हमारा ये प्यारे से प्रोग्राम। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है, और साथ ही साथ बिल्कुल जी बताएंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बनने वाले हैं, आप हमारे प्रोग्राम में कैसे हमें ज्वाइन करेंगे ये बताएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोगों का सवाल क्या होगा, यानी कि टॉपिक क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगी वो कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताएं, हर एक इंसान का ना एक डर होता है, जिससे ना वो इंसान जो है ना वो डरता है, एक ऐसी चीज होती है जिससे ना हमें डर लगता है। तो आज आप मुझे ये बताएंगे कि आपका जो डर है, जिस भी चीज से आप डरते हैं, जिस भी चीज का आपको फोबिया है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने फर्ज के लेना है कि आप सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि आप जिस चीज से डरते हैं वो डर खत्म हो चुका है, तो आप क्या करने वाले हैं। हमारे आसपास जो ना बहुत सारी सी चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है हमारी जिंदगी में जिससे ना हमें डर लगता है, और हम ये सोचते हैं कि अगर ये डर हमारे अंदर से खत्म हो जाए तो हम तो ये कुछ करेंगे वो कुछ करेंगे। तो बिल्कुल आज आप मुझे ये बताने वाले हैं कि आप जिस चीज से डरते हैं, आपका जो डर है, जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, अगर आप सुबह उठे और आपका वो डर खत्म हो चुका हो, यानी कि हमेशा के लिए खत्म हो चुका हो, तो फिर आप क्या करने वाले हैं। ओके जी, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रोग्राम में अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881। ओके जी, उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, जी ये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और जी ये लाड़काना FM 88.8 आप जो है ना वो सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। तो पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करने वाले हैं, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। तो नए नए लोग आते जा रहे हैं, कॉमेंट के साथ साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दें, चलें शेयर नहीं करें तो लाइक तो कर दें। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती सच में। चलिए जी, और इसी के साथ साथ बताइए आप कहाँ कहाँ से हमारे साथ मौजूद है, कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, और मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है उसके ऊपर आपका क्या कहना होगा। अच्छा, तो सवाल मैंने कुछ इस तरह आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, फर्ज करें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे ना उनको डर लगता है, तो मैंने आज आप लोगों से ये पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, फर्ज करें कि आप जिस चीज से डरते हैं और आप सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि वो जो जिस चीज से आप डरते थे ना वो आपका डर खत्म हो चुका है, यानी कि अब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, तो मुझे बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। और ऐसा नहीं बोलिएगा कि भाई असा की तो भो ही ना थी, दोस्तों कहीं खा डरजन आई, हर इंसान जी ने एकड़ी कमजोरी जरूर होती अव आई कहीं ना कहीं शे खा डरजन दुआ है आई जदी यो पुछो ही नवा ने तो बाबा ता केड़ी चीज खा डरजन आयो केड़ी से आ जेगा ता खे जेको ने महसूस कराई दे तो बाबा हने शे खा भो थे दो त कुछ माण्हुनि जा जेके भो हूंदा आहिनि न जंहिंजो डर हूंदो आहे उहो ॿुधी करे खिल बि ईंदी आहे त हिन चीज़ खां तव्हांखे भू थींदो आहे। तव्हांजी मुख़्तलिफ़ लोग और मुख़्तलिफ़ बातें, बिल्कुल जी इस प्रोग्राम का हिसा रहने वाले हैं आप, और हमारे प्रोग्राम में आइए जी, रौनकों को बढ़ाते जाइए, और साथ ही साथ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें मुझे ये भी जरूर बताते रहिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03-15-799-0595 बुड़ी 315-79-5595। ओके जी, और यहाँ पर आदिल खान हमारे साथ मौजूद, कहते हैं बेना मुझे तरफ का अवां के मंजन जो सलाम कबूल हो जे खुश आमदी तवां के चौथा। फहीम शेख हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम एंड मुलाल सलामदर। वासु भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम मुलाल सलामदर। मां ठीक आया पैरा भात आमदा की आयो खुश चंगा भला। और फहीम कहते हैं गाना सुनाइएगा, बिल्कुल आपको ये वाला गाना सुनाएंगे। अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अब्दुल गफार चंद शहर शाहपुर चाकड़। ओके जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है डॉक्टर साहब। आदिल कहते हैं कि बेना शायरी आहे, कांच के टुकड़े बनकर बिखर गई जिंदगी, मेरे किसी ने अच्छा मेरी किसी ने समेटा भी नहीं, हाथ जख्मी होने के डर से। वाह वाह वाह वाह, दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम जानी में ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। अब्दुल खालिक गबोल हमारे साथ हैं, कहते हैं असावट क्रीम पहुंची वो शायद ये था तुम चो कोई सो क्रीम पहुंची वो तो तुम इस्तेमाल कर जो ठीक है। और कहते हैं अदी कड़ा हाल है तवाजा अदा मजफा भली आया। अब्दुल खालिक गबोल भा तुम मोहब्बत वाइन प्रोग्राम बुध पाया। और अदील कहते हैं कि बिना आज गानों तो बुधाए जो
अख बदली तेरा यार रोलिया. ओके जी बिल्कुल तमाम की गानो बुधराइंदा सी. ए एम अंसारी हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम. कैफ हालुक या हबीबी, मुझे हालक सफा बनवा. हाँ बताया कि आए हो. और हमारे साथ जी मुलाई मुजाहिद बोजदार अठूक टूसन से कहते हैं हाँ जी माँ ठीक आया था बुधाई की आयो. और गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, आप ही नाइस जो, थैंक यू. एसन अरबानी हमारे साथ मौजूद है. एसन अरबानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, असम ये चीज ऐसी सिद्रा चाल उम्मीद खुश हूँ, शाद हूँ, आबाद हूँ, न याद हूँ, न ही विसरंद. बिल्कुल बिल्कुल जियो को चौथा वो सफर सही है. कहते असम भी कम करे छड़ा आयन लाइक कॉमेंट, चलो ॾाढो भलो कयो अथव सफ़ा वी आई पी सुधरियल ॿार आहियो. और गुलाम मोहम्मद मरी कहते आई एम रुखसार मरी फ्रॉम मीरपुर खास. ओके रुखसार मरी आपको खुश आमदीद कहते हैं जी इस प्यारे प्रोग्राम में. और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनका इस्तेमाल करने वाली, अगर आपके एरिया में मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहे तो आप को जो नंबर बता रही ना उसके ऊपर रब्ता जरूर कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते रहे. अच्छा दादू खां अहमदाज जतोई हमारे साथ ही, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्ला जतोई, तमाम भावन के जो था मोहब्बत हूँ प्रोग्राम बुध पया. और ये मौजूद है सलाम सिस्टर कैसी हो, जान मोहम्मद ब्रोही, शमन का गाना सुनाएगा, डेडिकेट टू ऑल लिसनर्स, बरकत महेसर, थैंक यू. ओके जी आपका भी थैंक यू, आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया. ओके फेसबुक वाले लोग जो है ना वो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना है, जिस चीज से आपको हद से ज्यादा डर लगता है, ठीक है. और आप सुबह को उठ रहे हैं और आपको पता चलता है कि भाई आपका जो वो जो डर था ना वो खत्म हो चुका है तो आप क्या करेंगे. हाँ जी ये एक बहुत अहम सी बात है जिसके ऊपर आपका क्या जवाब होगा मैं जानना चाहूंगी. तो जल्दी से बताइए हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए. और ये भी बताइए कि आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. और टाइम देखा जा रहा है तो शॉर्ट के मैं ब्रेक की जानेब जाने लगे तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं बिल्कुल यूं जाकर यूं वापस. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
3: सुनते रहो GFM 90.8।

आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आपको जिस चीज से डर लगता है, ठीक है, उसको जहन में रखिए और मुझे ये बताइए आप सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, नींद से जाग रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है आपको जिस चीज से डर लगता है डर खत्म हो चुका है, तो आप

रुखसार मरी हमारे साथ है मीरपुर खास से, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्यारी। और किशोर भाई आ चुके हैं, हेलो अदा की आए हो, माँ सुबह मजे में ताम अदा की आए हो। डॉक्टर अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं। अली रजा कल्होड़ो, सैयद गुलाम शाह, हफीज अली कल्होड़ो और सिस्टर असमा और भाई अजान भी आपके साथ मौजूद है। सब भाइयों को वेलकम करते हैं, बहनों को भी वेलकम करते हैं। और उसके अलावा है जी बख्तली सियाल भाई, हेलो कैसे हैं, सब भाई आ चुके हैं, जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। मोमन बीरन जखरानी भाई चिकअप आवाज से हेलो।

जाते ए एम अंसारी कहते हैं टॉपिक पर, डर हर उम्र में तब्दील होते जाते हैं। के जी बचपन में साइकिल ते स्कूल वींदे कुतन जो खौफ रस्ते में। अच्छा जड़ी तवहां टीनेजर थिया त पोइ तव्हांखे बाइक ते किरण जो खौफ़, मूंखे लॻंदो आहे छोकिरनि खे बाइक तां किरण जो खौफ़ न आहे हूंदो। हुन खां हिन वजह अॻिते लिखियो अथव सही आहे सही आहे सही आहे। ऐं हिन खां अलावा कहते अब डर है के मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पर फ्राई होगा। ये डर पीछा ही नहीं छोड़ता भाई, अब यही डर है कि लाइफ मिलेगी या तवे पर फ्राई होना पड़ेगा। एनी आइडिया टू प्लीज हेल्प मी। अच्छा इस मामले में मैं आप के बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि ये सारे जो डर आपने बताए हैं ना ये मुझे भी है। अजीब सा फोबिया है, तो खैर इसके ऊपर थोड़ी बाद में बात करते हैं। और मोमना आ चुकी है, प्यारी मोमना हिल, वैसे आपका शो सुनती थी, आज आपके शो में शामिल भी हो गई हूँ। ना प्यारी मोमना, आपको खुश आमदीद कहते हैं भलीकार। और मुजाहिद बोजार कहते हैं सिटोजी टॉपिक। अच्छा कहते हैं मर्द खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता, मेरे ख्याल में मर्द को डरना नहीं चाहिए। आपने सुना होगा जो डरेगा वो मरेगा, क्या बोलती तू ना पापा, मर्द के भी लगन वा डर या कंजी गाला। ओके जी सो हाँ जी रुक सा।

जुड़ी जो भी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, टाटा टाला, तानो खुश आयो। मोमना कहती हैं कि टॉपिक सिद्रा, मैं नहीं डरती अपने अल्लाह के सिवा क्योंकि मैं ब्रेव हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी। और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक बुधो को ना पर कॉमेंट्स में अंदाजो लगी वो जवाब दिया थो, बचपन में माणन खां भू थो हो, अज भी माणन खां भू थो आ, बाकी मानी खावां थो तो थाव कोन। अच्छा ढो को न थींदो आ, मानी खाओ तो ढो को न थींदो आ, यो जा अजा ना तोड़ी खाओ तो ढो थी वने तो। तांगे डॉक्टर के देखा रहे हो, ठीक है, वो तांगे का दवाई दींदो जैसा तवा जो जो कने सिस्टम थोड़ो सही थी वेंदो। और फहीम शेख छाता चो सिद्रा कहते हैं आप कौन सी क्रीम यूज करती हो वो भी तो बताओ। मैं भाई सच्ची वाली बात बताऊं, वाइट एच लवली क्रीम का मैं इस्तेमाल करती हूं, और वाइट एच लवली क्रीम मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मुझे दिल चंदा रात है जेके मानो वनन था ना सबने के पकड़े पकड़े चांदा बाबा वाइट एच लवली क्रीम है। अला मतलब हिकड़ा मानू हुंदा नो, अगर उनन के कुछ भी फायदो मिलंदो ना केड़ी भी चीज मा तो हु मानन का लिकाईंदा है, पर मावरी वो मानू आया अगर मुके किथा भी कोई भी फायदो मिले ना मावरी सबनी मानन के बुधाईंदी आया। सो बिल्कुल तां भी इस्तेमाल कयो, अगर तमहा जी स्किन सेंसिटिव भी आहे, तमा रेगुलर डेली बेसिस से कोई कम कयो था, आई तमा के मेकअप भी करनो आ पर ता मेकअप नथा करे सगो छ त गर्मी सफा घणी थी वई आहे, त ता वाइट एच लवली क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था। वाइट एच लवली क्रीम जो इस्तेमाल सफा वीआईपी तवा बाबा, तमा ही चुटकी वजाईना तमा रेडी हुंदा। सो वाइट एच लवली क्रीम ता सब लगाए सगो था।

अनवर भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। गुलन के ॾिसी ख़बर पई त साईं माण्हू टोड़ींदा बि उन्हनि खे आहिनि जेके सुठा हुजनि। वाह वाह वाह वाह। मोहम्मद समान भाई आ चुके हैं, वेलकम बुआ जी। अपना भी अटेंडेंस लगा दें इस शो में, हम भी आपके साथ साथ हैं। ओके जी, खुशामदीद कहते हैं हमारे प्यारे भाई जान को। और महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, ग्रेट होस्टिंग में मार्जे, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जिन लोगों ने पोस्ट को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कर दें भाई जान, टाइम थोड़ा होता है हमारे पास।

था किशोर भाई, बस यो प्रोग्राम रहेला, शाह खबर मतायो भी करे बैठू। अनवर भाई के माँ लिसनर्स जा कमेंट बुद्धी समझी वो टॉपिक कड़ो है। हाँ ऐसो कड़ा इंटेलिजेंट मानू आन मुझे प्रोग्राम में। और निदड़ी आ चुकी, हेलो हेलो मैं भी आ गई, वेलकम टू शो प्यारी खुशामदीद हमारी प्यारी जानी। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं क्रीम बेहतरीन आ सॉन्ग बुधाए जो शमन जो शमन हलाई था बिल्कुल भाज लाए मोहब्बत प्रोग्राम बुध पया। मोहम्मद जमान कहते हैं अज अस वट नेटवर्क सफा खराब लगो पया। बिल्कुल बिल्कुल नेटवर्क खराब आए वाकई मतांच गाल सहमत आया। चाचा खालिद कहते हैं व्हाइटिश लवली क्रीम अगर अधूरी जिंदगी मुकम्मल कर देगी तो आपके कहने पर ले लेते हैं। बिल्कुल लीजिएगा। निदड़ी कहती पबजी मोबाइल में बिजी थी आज लेट हो गई मैं। भाई कदा तो के नया नया शौक पैदा थे आए वो भी एड़ा। अच्छा चाचा खालिद कहते मुझे तो जिनों से डर लगता है बट अब वो डर खत्म हो गया है। और यो टॉपिक इंसर छा चाचा किड़ी गालता कर वडा थी व्या पर जिनन का जिनन। अदील कहते मुखे डर तवां खा थिंदो आहे मुखा जो मां जिनड़ी आया जा भला। और फहीम कहते हैं टॉपिक मुझको डर स्नेक से लगता था लेकिन वो भी अब खत्म हो गया है, अब डर सिर्फ बिजली से लगता है। अच्छा बिजली के बिल से तो नहीं ना या उससे ज्यादा लगता है। और उसके अलावा अनवर भाई कहते हैं जो डर गया वो मर गया ना बबैड़ी बिगाल को निकाय सिर्फ डायलॉग आए मूवी जो रियलिटी थोड़ी चेंज आ। ओके जी सो प्रोग्राम आप

0: सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए। आपके ऑल स्किन टाइप के लिए है। सब माणू हणी सघन था, सब कोई सोनो थे, बाबा मां त इहो चाहियां थी। सो हाणे टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, उन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा। वापसी जल्दी तव्हां मोटी जूंदा। तव्हां कॾहिं न वञे ते वेठा हुजो, मां हीअं वञी हीअं वोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे connected and keep listening. Whitish and the Skin Beauty Show.
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri NL Jaise Cream. Dard, Sojan, Viram Fauri Khatam. Aaj hi Karibi Store se naam lekar talab karein.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

सिंध काबीना सूबे में कणक जे हथरादू खोट ऐं अटे जे अघ में वाध जो नोटिस वरितो। वॾे वज़ीर जो कणक ज़खीरो करणु ऐं अटो महांगो विकिरो करणु ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हुकुम। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सतह ते सिंध काबीना जो इजलास। खुराक खाते में इंटीग्रेट वेट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ़ करण जो फ़ैसिलो। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो आहे सिंध खे रंदड़ माली साल लाइ 15,90,000 टन कणक जी खोट खे मूरी रही आहे। ज़खीरा अंदोज़ी सबबि ओपन मार्केट में कणक जी क़ीमत इमदादी अघ खां बि वधी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त कणक जी ख़रीदारी ज़खीरे ऐं फरामी वारे समूरे निज़ाम खे जदीद टेक्नोलॉजी सां ॻंढियो पियो।

0: वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठ समेडा बाबत इजलास। नंढे कारोबार के हथी ॾियण लाइ कर्ज़नि खे आसान बणाइण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त नंढनि कारोबारनि खे हथी ॾियण लाइ कर्ज़नि खे आसान बणायो वञे। हारे न आबादगारनि खे बि कारोबार तरफ़ आणण लाइ मदद फराहम कई वञे।
1: पंहिंजी सही जी इज़त कयो। धमकियूं जारी रहियूं त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त ईरानी अवाम खे फ़ौज खे धमकियुनि सां डिॼारे नथो सघिजे। मुआदे जी शिक नंबर 13 वाज़ी आहे त धमकियुनि जो सिलसिलो जारी रहियो त हतमी मुआदे बाबति ॻाल्हियूं शुरू न थींदियूं। लखे ईराननि जे इतिहाद जा मंज़र मां ॾिठा। घटि में घटि पंहिंजी सही जी इज़त ई कयो।

0: इमरान खान कुम पहुंचायल शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मड़ जो आखिरी रस्मू शुरू आयतुल्ला खामनाई जवादी आमले शहीद आयतुल्ला खामनाई जे जनाजे नमाज पढ़ाए कुम में आखिरी रस्मू मुकम्मिल थियण बाद शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मड़ के इराक मुंतकिल कयो वेंदो। कुम में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त।
1: किर्गिस्तान के दौरे से मौजूद सदर आसिफ जरदारी के मान में तकरीब सादरी जिया पारूफ सदारती माल पहुंचने सदर आसिफ जरदारी जिया सदर आसिफ जरदारी के इत्तेफाक
0: हुकूमत 28 इदारन जे निजकारी ते कम करे रही है। टैक्स निजाम इंसानी राबतन के खत्म करे रहा आयू। कराची में तकरीब के खिताब कंदे नाणे वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब चयो आहे त गुजरे तरक्की सबब मुआशी तरक्की जे शर 3.7% रही। बजट में मुलाज़िमन तां बे टैक्स जो बार घटायो आहे। ईरान सां वापसि

0: कानपुर महर वेझो ब मासूम निगरियूं वाटकोर्स में ॿुॾी फोत घोट इस्माइल पिताफ़ीअ में 10 वरियनि जी अजवा ऐं 8 वरियनि जी सभाणी पिताफ़ी ॿुॾी फोत थियूं।
1: तलहार में मीरवा केनाल में पाणी खोड़ खिलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज, मुख्य रोड ते धरणो, आबादगार ने एहतजाजी मुज़ाहिरो करे हैदराबाद मदीन रोड ते धरणो हयो। घोटकी में कादरपुर माइनर 1 ऐं 2 जे आबादगारनि जो पाणी खोड़ खिलाफ़ सिरा ऑफिस वारो धरणो, पाणी चोरी रोके पाणी फराहम करण जो मुतालबो।
0: नसरपुर में मीरपुर खास जेल में फोत थियल कैदी जे वारसन जो लाश रखी धरणो, फोत थियल कैदी मोहम्मद यूसुफ टालपुर जे वारसन टंडोलिया रोड ते लाश रखी धरणो हयो। वारसन जो चवण आहे त असांजे हमराह खे फारूक टालपुर ऐं ॿियनि दुश्मनीअ तां कूड़े केस में फासाए मारायो आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ ताईं एहतजाज जारी रहंदो।
1: सिंध में मुख़्तलिफ़ नौकरियुनि लाइ टेस्ट पास करण उम्मीदवारनि जा आत्मी एहतजाजी मुज़ाहिरा, लाड़काणे में अर्ली चाइल्डहुड टीचर जी नौकरीअ लाइ टे ॾींहं औरत उम्मीदवारनि पारां एहतजाज कयो वियो। दादू में मास्तरी लाइ एम क्यू टेस्ट पास उम्मीदवारनि मुज़ाहिरो कयो। पनियाकल में बि जेल पुलिस कांस्टेबल जे भर्ती लाइ दरख़्वास्त ॾिनल नौजवान जो एहतजाज, उम्मीदवारनि जो चवणु आहे त लगातार एहतजाज बावजूद कंहिं बि नोटिस नाहे वरितो। महांगाई ऐं बेरोज़गारी सबबु परेशान आहियूं, ऑर्डर ॾेई बेचैनी ख़तमु कई वञे।
0: नारो वेझो महिमान थी आयल नौजवान खे घटि सां ॿधी तशदुद वीडियो वायरल, ॻोठ अताउला बिहार में नौजवान कामरान जिस्कानीअ ते तशदुद कयो वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त नौजवान ठरी मीरवा जो रहवासी आहे जेको नसीबुल्ला जिस्कानी वटि आयल हो। पुलिस मौजूद मुतासिर नौजवान तोड़े संदसि वारसनि सां केर बि थाणे ते न आयो आहे। वीडियो ॾिठी आहे, इल्ज़ाम हेठि आयलनि खे हथु करण लाइ पुलिस खे मोकिलियो आहे। मुतासिर ईंदा त केस दाख़िल करण बाद वधीक कार्रवाई कंदासीं।
1: रूस जो यूक्रेन जे गादी वारे शहर केव ते हमिलो, 26 ॼणा मारिजी विया। परॾे मीडिया चवण आहे त रूसी हमले में केतिरा ई शहरी ज़ख़्मी पिण थिया आहिनि। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो करियर जी आख़िरी फुट वर्ल्ड कप खे यादगार बणाइण में नाकाम। फीफा वर्ल्ड कप जे अहम मैच में स्पेन पुर्तगाल खे शिकस्त ॾेई क्वार्टर फाइनल में पहुची वई। स्पेनिश टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल खे ॿुड़ी जे मुक़ाबले में गोल तां शिकस्त ॾिनी। इवेंट जे ॿिए मैच में बेल्जियम जी टीम मेज़बान मुल्क अमरीका जी टीम खे इवेंट खां ॿाहिरि कढी छॾियो। बेल्जियम जी टीम अमरीका खे 1 जे मुक़ाबले में 4 गोलनि तां शिकस्त ॾिनी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज 90595 ओके नंबर आए बड़ी 315-79-595 ही वारो नंबर तव्हांखे डायल करणो आहे इन नंबर ते राबतो कंदा इन नंबर ते तव्हांखे कॉल करणी आहे या मैसेज करणो आहे तव्हां कॉल भी करे सघो था तव्हां मैसेज भी करे सघो था इन्हनि खे ॿुधायो त बाबा साईं असां जेको फलाणी जॻह खां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं था ऐं फलाणी फलाणी जॻह ते जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन फेस वॉश हुजे या वरी वाइट हेयर जा प्रोडक्ट्स हुजनि ही अवेलेबल अञा ताईं कोन थिया आहिनि सो अवेलेबल कराए छॾींदा अवेलेबल करायो ऐं तव्हांजे लाइ आसानी थी वेंदी बाबा इस्तेमाल कयो खूबसूरत रहो खूबसूरतियां भई हर किसी का हक़ होती है हासिल करना तो खूबसूरत रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए साथ में डी स्किन फेस वॉश लगाना मत भूलिएगा अच्छा अज मुहा का सवाल जो पूछे रिपीट क्यों था अच्छा तो काफी मानो एड़ा होना है जन असा के हाने बुधन स्टार्ट कयो तो उनन के वेलकम चो था नहीं तमा के सवाल जेको अज मु दिनो आई हो आए तो तमा फर्स्ट कयो तमा के केडी से खा बहुत इंदो आए यानी के हर एक इंसान जन एकड़ी या हुंदी आ तो उनन के बहुत इंदो के न के चीज का आई तमा सुबह जो उठो था तमा के यो एहसास से तो महसूस से तो जे चीज का तमा डरंदा वो डर तमा जे अंदर खत्म थी वयो आए तो पो तमा छा कंदा

ओके सर, बहुत प्यारा यहाँ पर आप गाना सुन रहे हैं और इसी के साथ साथ आप लोगों की फीडबैक्स की जाने पाते। हाँ हाँ खुश थी कॉली नहीं बैठा मैं सुबह नहीं बैठा। ओके सो अनवर भाई

अच्छा निधि कहती है टॉपिक मेरा तो पता है तुम्हें कितनी डरपोक हूँ मैं, आइए मैं चुप बस। हाँ भाई कुछ इंसान जो होते ना वो बहुत ज्यादा ही डरपोक होते हैं, तो इतना ज्यादा डरपोक भी नहीं होना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ मक्सी साहब के कुछ नहीं है मोकल डिनी से हाँ, वापस बैठी आया है उसे लियाकत अली अब्बासी हमारे साथ है, कहते आवाज भी सागे आए प्रोग्राम भी सागे पर सिदरा बदल जी वही है अल्लाह अच्छा थे सिदरा के बुधाया था सही। ए मंसारी कहते हैं आपका भी सेम मसला है, सच क्या है सच क्या है, हम किसको किसको माने। अच्छा सच का पता करवाते हैं आप, तसल्ली रखिए जरा। ओके एहसन अली बुगटी हमारे साथ हैं, वालेकुम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं पूरा। सनावला बिरोई हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम अदी ठीक है तामदा की आए। अच्छा अदिल कहते हैं बिना क्रीम मुखे गिफ्ट दियो न भाई, सब इते छा गिफ्ट वठण लाइ बिठायो छा, कुछ पांजो भी थोड़ो खर्च कयो बाबा, वठो पान पैसन सा कुछ खबर पई। आई हा डे स्किन ब्यूटी क्रीम वठो, डे स्किन फेस वॉश गड लाजमी वठो ठीक है।

भाई क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने लिस्ट में लगाया और साथ साथ आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताइए, और कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बताइए, और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बताइए। अच्छा, दर्दे दिल के लिए टॉपिक है चिपकली और कॉकरोच से बहुत डरती हूँ, सुबह उठा तो वो अच्छा सुबह उठूं और वो खत्म हो चुका हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, बाकी कोई मुझे डरा नहीं सकता। देखो बातें इतनी बड़ी और डर किन चीजों से लगता है। अच्छा नंदिनी कहती है फेस वॉश यूज करती हूँ मैं एंड बहुत ही अच्छा है, गर्मी में हम फेस वॉश। अच्छा कहती गर्मियों में हम फेस वॉश यूज करते हैं इसीलिए डी स्किन फेस वॉश बेस्ड है, आप सब भी यूज करें। क्या बात है, देखिए भैया मेरी बात माने ना माने लेकिन नंदिनी की बात जरूर मानिएगा।

सही ना है बाबा। चाचा खालिद कहते हैं आप इतनी प्यारी पब्लिसिटी करती हैं प्रोडक्ट्स की कि जो नाम भी चाहे वो भी परचेज करेगा, आपके कहने से धनराशि खर्च करने से भी नहीं घबराते। भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आप धन्य हो, धन्य माशाल्लाह, आप महान हैं।

0: रसूला बाद से आबिद हुसैन शबानी भाई वालेकुम अस्सलाम अदी डर की वजह से मुआशरा चल रहा है जैसा कि गुनहगार को हाँ भाई ये आपने बिल्कुल सही बात कर दी बहुत बेहतरीन जबरदस्त और हमारे साथ मौजूद हैं कश्यप कहती हैं आप शाम को भी शो करती हैं क्या किस टाइम तक शो है बताइएगा मुझे मेरा शाम को जो प्रोग्राम है ना वो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक है अच्छा ये हमारे साथ हैं एक मिनट जी क्या कहते हैं विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्रा आप कैसी हैं बाजी हम खुदा की जात से डरते हैं और किसी से नहीं डरते बाजी सिद्रा टेंशन देने का नहीं लेने का है और आज अच्छा टेंशन देने का लेने का नहीं सही से वहां चाहो यू छा मतलब थोड़ा इधर उधर हो गया ओके जी आपने ममता सोलंकी का गाना सुना चाहे बिल्कुल आपको सुनाएंगे डेडिकेशन आपकी जाती है डाइवर नजीर सोलंगी वही सोलंगी अलीजान सोलंगी आसिफ और अल्लाह वसायो सोलंगी एंड मुबशिर सोलंगी को ओके जी ओके खुशामदीद कहते हैं सब भाइयों को और आप जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए कौन कौन हमारे साथ है अच्छा मोमना कहती है कि मैं सोचती हूँ आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है आप कितनी खूबसूरत होंगी बस पूछे ही मत अरे भाई बहुत शुक्रिया आपका आपकी मोहब्बतों का यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाने लगे और जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं तो आप यहीं पर हमारे साथ मौजूद रहिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए
1: GAFM 88 Network Sindh ki awaaz Tehzeeb o Saqafat
2: Khoobsurti hai jo asal raaz सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
5: अजरक के रंगों से रंगी
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
5: सिंध के दिल से निकली आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अच्छा मुदस्सिर तू बता मुझे यार, दिल पे हाथ रख के बता, तेरी वाली ने आज कौन से कलर के कपड़े पहने होंगे?
2: दिल पे हाथ रख के बता दूं, लाल रंग के कपड़े पहने होंगे, तू देख लेंगे।
1: अबे तूने मुझे सोच के बताया, मुझे लग रहा है यार।
3: ठीक है शान, तू बता तेरी वाली ने कौन से रंग के कपड़े पहने होंगे।
1: मेरी वाली ने काले कलर के कपड़े पहने होंगे।
2: क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है अगले का यार।
3: अबे यार वो तो वाकई में आ गई यार, इसकी वाली ने तो वाकई में लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वाह

0: शान यार, तेरा प्यार मुझे सच्चा नहीं लग रहा। तूने जो रंग बताया तो उसने वो नहीं पहना, लेकिन इसने सही बताया था।
1: चला
2: कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो है मेरी लैला, कदम आहिस्ता
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ओके जी, बहुत ही सोना सा गाना सुन रहे थे. एक और बहुत ही खूबसूरत गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम यहाँ पर सुनने वाले हैं. और हमारे साथ है उदास लड़की, कहती जानवरों में से मुझे सबसे ज्यादा डर सांप से लगता है, हद से ज्यादा डरती हूँ उससे. अच्छा, क्या बात है जी. और फहीम कहते हैं ओके, गाने आपको पसंद आ रहे हैं. बख्त अली सियाल भाई हमारे साथ मौजूद है. हेलो भाई जान. अच्छा, यहाँ पर आपने ये चीज नोट करी होगी, जो लोग खुद की भी नहीं मानते वो मेरी बातें मानते हैं. स्वैग है भाई.

अच्छा दर्दे दिल, आप जो गाना बोल रही ना वो गाना मुझे समझ नहीं आ रहा जरा, पता नहीं कौन सा गाना है, तो थोड़ा सा आगे बताइए आगे क्या है इस गाने में ताकि हम प्ले कर सके। साथ आप यहाँ पर शो सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से।

अच्छा बिलाल अली आ चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? और साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ ही सच्चा आयो, बाकी मुनाफिक गदार खां हमेशा जो अल्लाह बचाए। राम साजिद हुसैन सुमरू मिठो देरो खां से गड मौजूद आए। ओके भा तुम मोहबतू आन प्रोग्राम बुध पाया बुधा होता मिठो देरो में मिले थी कौन डी स्किन ब्यूटी क्रीम पूछा कराई या कौन अच्छा बिलाल कहते हैं वो लड़कियां जो दो दो किलो मेकअप लगाकर भी बस इस चीज के ऊपर जरा हम बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा अस मोमेंट हो जाएगा। सो रहने देते हैं। अच्छा फहीम कहते हैं कि हम

अरे सजाद अली जमाली नवाब शाजी हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम करते हैं। और ए एम अंसारी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम मिले जब से बचपन में ले गई ये सॉन्ग तो। हाँ भाई, ये गाना वाकई बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत है। इस गाने को जितनी भी जनरेशन आएंगी ना, सारी सुनेंगी, उन सबको ये गाना अच्छा लगेगा। और बिलाल कहते हैं कि अपनी जहनी सुकून के लिए तीन चीजें कम रखें, अल्फाज

स्किन मांगने जाते हैं तो एक और क्रीम भी दिखाते हैं. बिल्कुल दुकानदार जी की ना वड़ा चालाक हूं था वाला इन मामले में. यह चीज मां भी नोटिस कई है. अगर तुम्हारे का कोई प्रोडक्ट वठना ना उन्होंने वो प्रोडक्ट ना तो ना चाहता बाबा ही जो कस्टमर आयो है यो खाली हथ ना कोई चीज तो पकड़ाए छो. सो तुम भी सफा पको पह करी वो तो असंकी वनो आ दुकान तो सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी है. डी स्किन फेस वॉश वो है. अगर वो प्रोडक्ट ना तो उन्होंने चो भाई साहब ही प्रोडक्ट अवेलेबल करायो न तो भलो न. सो तव्हां ज़रूर डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश लॻाइजो जीअं तव्हां सुहिणा थी वञो, ख़ूबसूरती तव्हांखे मिले ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि थी.

अच्छा पको पर मतलब हिकड़ी गाल जें के तमा चो त बस सही है करणी आ सो करणी आ तुझ में ही ओने के चेबा पको पर। अच्छा बिलाल कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि मुझे देखने के लिए इस धरती पर तुम्हारी दो आंखें सलामत है। वाह वाह। अच्छा जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम जबरदस्त आए तमाम जो सभी दोस्तों के सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई दो घंटे कैसे गुजरते हैं। नहीं गर्मी कुछ ज्यादा ही है तो ऐसी जिंदाबाद। किशोर भाई कहते कयो बाबा कयो बीहर वफा पो बीहर बर्दाश्त भी कजो। नहीं वो जो बर्दाश्त होता है ना वो नहीं हो पाता सो इसीलिए इरादा कैंसिल करते। अच्छा वफा शहजादो मक्सी भाई ऐसा से गुड मौजूद आए भाजू मोहब्बत वाइन एसन कहते हैं गाल समझ भी ना आई। ओके सो असांजे वञण जो टाइम बिल्कुल करीब अचे पहुतो आहे। जी बिल्कुल मैं अभी जाऊंगी और 5 बजे दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी तो मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिएगा।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना। और उनखां अलावा जेको शोनी तवाजो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया वरी सला तवा से मुलाकात मुझे थे पई बाबा 5 बजे 6 बजे ताई वाले प्रोग्राम में। ठीक है, सो ते मके जॉइन के जो वही पांजो ओ हिडो सारो ख्याल रखना आई के ठीक गलती थी जे को ओडो लस गाले जे को तवा के सुठो न लगो तो ला माजरत कयो था विंदे विंदे भी ताके चवंदी वेनम तबा बा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो जे या डी स्किन फेस वॉश हो जे वाइटिश ब्यूटी क्रीम हो जे वाइटिश लवली क्रीम हो जे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब हो जे वाइटिश साबुन हो जे या वरी फेस वॉश हो जे सब चीजों तवा जे खूबसूरती जलाए आहन तवा जे स्किन के बेहतर बनाना जलाए आहन सो तवा इनन के ट्राई करी दिसो ट्राई करना मा छाई वेदो सो ट्राई करी दिसो पंजे प्यारन के भी दस दियो तो हु भी लगाए इन का अलावा खूबसूरत रहो आई खिलंदा रहो मुस्कुराईंदा रहो पानी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कयो आई वरी मिलूंगा 5 बजे सो मोकलानी नाही बाबू सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड

0: सी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: सिंध काबीना सूबे में कणक जे एतिरा खोट आटे जे अघ में वाध जो नोटिस वठी छॾियो। वॾे वज़ीर जो कणक ज़खीरो करणु अटो महांगो करणु विकिरो करणु ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हुकुम। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। खुराक खाते में इंटीग्रेटेड वेट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ़ करण जो फ़ैसिलो। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त सिंध खे हलंदड़ माली साल लाइ 15,90,000 टन कणक जो खोट खे मुंहुं ॾेई रही आहे। ज़खीरांदोज़ी सबबु ओपन मार्केट में कणक जी क़ीमत इमदादी अघ खां बि वधी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त कणक जी ख़रीदारी ज़खीरे ऐं फरामी वारे समूरे निज़ाम खे जदीद टेक्नोलॉजी सां ॻंढियो वञे।
1: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि समेडा बाबति इजलास। नंढे कारोबार खे हथी ॾियण लाइ कर्ज़नि खे आसान बणाइण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त नंढनि कारोबारनि खे हथी ॾियण लाइ कर्ज़नि खे आसान बणायो वञे। हारियुनि ऐं आबादगारनि खे बि कारोबार तरफ़ आणण लाइ मदद फराहम कई वञे।
0: पंहिंजे सही जी इज़त कयो। धमकियूं जारी रहियूं त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी पार्टी वज़ीर अब्बास इराकची चयो आहे त ईरानी आवाम खे फ़ौज खे धमकियुनि सां डिॼारे नथो सघिजे। मुआदे जी शिक नंबर 13 वाज़े आहे। धमकियुनि जो सिलसिलो जारी रहियो त हतमी मुआदे बाबति ॻाल्हियूं शुरू न थींदियूं। लखे ईराननि जे इतिहाद जा मंज़र मां ॾिठा। घटि में घटि पंहिंजे सही जी इज़त ई कयो।
1: कुम पहुचायल शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मड जो आख़िरी रस्मू शुरू। आयतुल्ला खामनाई जवादी आमले शहीद आयतुल्ला खामनाई जे जनाज़े नमाज़ पढ़ाई। कुम में आख़िरी रस्मू मुकमिल थियण बाद शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मड खे इराक मुंतकिल कयो वेंदो। कुम में सिक्योरिटीअ जा इंतज़ाम सख़्तु।
0: किर्गिस्तान जे दौरे ते मौजूद सदर आसिफ ज़रदारी जे मान में तकरीब। सादिर जी फारूफ सदारती महल पहुचण ते सदर आसिफ ज़रदारी जे आजियां कई। सदर आसिफ अली ज़रदारी खे गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी जी किरगम हम मनसब सां मुलाक़ात। बतरफ़न लाॻापन ऐं वापारी सहकार खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़।
1: हुकूमत वधीक 28 इदारनि जी निजकारीअ ते कमु करे रही आहे। टैक्स निज़ाम मां इंसानी राब्तनि खे ख़तमु करे रहिया आहियूं। मुल्क में सभिनी खे टैक्स ॾियणो पवंदो। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त गुज़िरियल माली साल जी पुॼाणी मज़बूत मुआशी इस्तक़ाम सां थी आहे। वॾी सनअतनि जे तरक़ी सबबि मुआशी तरक़ीअ जी शरह 3.7% रही। बजट में मुलाज़मनि तां बि टैक्स जो भार घटायो आहे। ईरान सां वापारी लाॻापन में मुस्बत अघभराई थींदी।
0: बलोचिस्तान जे शहर ज़ियारत में हथियारबंदनि जे पुलिस चौकी ते हमलेबार सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे नव अहलकार शहीद। बलोचिस्तान हुकूमत जो तर्जुमान शाहिद रिन चए पुलिस ते हमिलो कयो। फोर्सिस जवाबी कार्रवाई जे नतीजे में 15 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे ॿिनि SHO समेत 9 अहलकारनि शहादत माणी।
1: खानपुर महर वेझो 2 मासूम निंगरियूं वाटर कोर्स में ॿुॾी फोत। ॻोठ इस्माइल पिताफ़ीअ में 10 वरियनि जी अजवा ऐं 8 वरियनि जी सबाणी पिताफ़ी ॿुॾी फोत थियूं।
0: तलार में मीरबा केनाल में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख रोड ते धरणो। आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे हैदराबाद मदीन रोड ते धरणो हयो। घोटकी में बि कादरपुर माइनर वट 1 ऐं 2 जे आबादगारनि जो पाणी कोट ख़िलाफ़ सिराफ़ आॾो धरणो। पाणी चोरी रोके पाणी फराहम करण जो मुतालबो।
1: नसरपुर में मीरपुर ख़ास जेल में फोत थियल क़ैदी जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। फोत थियल क़ैदी मोहम्मद यूसुफ तालपुर जे वारसनि टंडो अलियार रोड ते लाश रखी धरणो हयो। वारसनि जो चवणु आहे त असांजे हमराह खे फारूक तालपुर ऐं ॿियनि दुश्मनीअ तां कूड़े केस में फासाए मारायो आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ ताईं एहतजाज जारी रहंदो।
0: सिंध में मुख़्तलिफ़ नौकरियुनि लाइ टेस्ट पास करण उमेदवारनि जा एहतजाजी मुज़ाहिरा। लाड़काणे में अरली चाइल्डहुड टीचर जी नौकरी लाइ टेस्ट ॾींदड़ औरत उमेदवारनि जो एहतजाज। दादू में मास्तरी लाइ NTS टेस्ट पास उमेदवारनि मुज़ाहिरो कयो। पनियाकल में जेल पुलिस कांस्टेबल जी भर्ती लाइ दरख़्वास्त ॾींदड़ नौजवान जो एहतजाज। उमेदवारनि जो चवणु आहे त लॻातार एहतजाज बावजूदि कंहिं बि नोटिस नाहे वरितो। महांगाई ऐं बेरोज़गारी सबबि परेशान आहियूं। ऑर्डर ॾेई बेचैनी ख़तमु कई वञे।
1: नारोवे जो मेहमान थी आयल नौजवान के खट सां बधी तशद्दुद वीडियो वायरल गोठ अताउला पिहार में नौजवान कामरान जिस्कानी ते तशद्दुद कयो वियो ज़रीन जो चवण आहे त नौजवान ठरी मीरवा जो रहवासी आहे दस वारिस मां केर बे थाने ते नाहे आयो वीडियो ॾिठी आहे इल्ज़ाम हेठि आयलनि खे हथ करण लाइ पुलिस खे मोकिलियो आहे मुतासिर ईंदा त केस दाख़िल करण बाद वधीक कारवाई कंदासीं
0: شام کی راجدھانی دمشق میں فرانسی صدر میکرون کی موجودگی دوران دھماکہ 18 زخمی پرڈی میڈیا موجب میکرون کے ہوٹل پارا دھماکہ تھیا دھماکہ میکرون کے ہوٹل میں ون بعد تھیا جن کے نتیجے میں 18 زخمی تھیا صدر میکرون محفوظ رہو

0: चीन जे सूबे होबी जे शहर ऐज़ायो में वाचूड़न तबाही मचाए छी। तेज हवाओं सबब सामान उड़ी वो। छह जणन जे फोत थियण जी तस्दीक। केतरा ही जख्मी।
1: स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो केरियर जे आख़िरी वर्ल्ड कप खे यादगार बणाइण में नाकाम। फीफा वर्ल्ड कप जे अहम मैच में स्पेन पुर्तगाल खे शिकस्त ॾेई छॾी। स्पेशन टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल खे ॿुड़ी जे मुक़ाबले में हिकु गोल तां शिकस्त ॾिनी। इवेंट में ॿी मैच में बेल्जियम जी टीम मेज़बान मुल्क अमरीका जी टीम खे इवेंट खां ॿाहिरि कढी छॾियो। बेल्जियम जी टीम अमरीका खे हिकु जे मुक़ाबले में चइनि गोलनि तां शिकस्त ॾिनी।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और

0: सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: Plan. White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ Aloe Vera Vitamins और Avocado की भरपूर खूबियाँ जिसके Minerals Skin में fully absorb हो जाए, Skin को fair और fresh बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ White H Beauty Cream Glowing Skin का राज। A product of Biocon International Pakistan.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते